जाने असथूल। चौ वर्णा को दे उपदेश, नानको स पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर तारै, पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारै। सर्व रोका औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत के तै न पाईऐ धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर करम। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिसन द्री आया, दाद संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास तर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै। सकल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हिता वै, जीवन मुक्त सोग कहा वै। तैसा हरक तैसा उस सोग, सदानंद तै नहीं ब्योग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरता ए साई जुगत, नानक हो पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कार राखै तैसा तिन नाओ। आपे करण करावन जोग, प्रापा वै सोई फन होग। पसर्यो आप होय अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग।

गले अष्टपदी। जिसके अंतर राज विमान सो नर्कपाति होवत स्वान, जो जाने में जोवन वंत सो होवत विष्ठा का जंत। आप उसका कर्मवंत कहावे, जन्म मरे भोजन प्रमावे, धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। धनवंता हुए कर गर्वावे, तृण समान कट संग न जावे, बोल स्कुरमान के ऊपर करे आस, बल भीतरता का हुए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिनमय हुए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुवारी। गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगे प्रवान। कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे, सगले विरतारे अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे। आप उसको जो भला कहावे, तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व की रेंजा का मन होए, कौ नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए। जावे जाने मैं किच करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लगने चिल नाही चीत।

भाई अपने सेवक किया पत्र रखा था कि गतमित कोई न लाके प्रभ के सेवक को कौन पहुंचे। प्रभ के सेवक की उचते उच्चे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दस दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मैं कल जाके भस्म करे लश्कर कोट लाके जिसका सास न काटते आप। ताको राख देकर हाथ मान जतन करत बात जिसके करत बिरते जात मारे न राखे अवर न कोय सर्व जिया का राखा सोए। कहे सोच कर है रे प्राणी जाप नानक प्रभ लख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए। पी अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछे अवर नाहीं दिष्टाया। नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपताने मंत्र नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम। कहो नानक जन कह सदकाम बोलो जा जेवा दिन रात प्रभ अपने जन की नी दात करह भक्त आत्म कह चाहे प्रभ अपने सुन रह है सुमाए। जो आओ वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानाओ तिसका गुण कह एक न जानाओ। आठ पहर प्रभ से

जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक कर है हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावह मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तूने

है, चुन चुन सत्र हमारी मारिया है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत

देव दैत जच्छन उपजायो आद्यंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो घट घट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन की सुखी एक एक की पीर पछान घट घट की पट पट की जान जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप हे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेला, सुनै गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नरके रहे, हो जो या की एक बार चौपई को कहै, चौपई संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो,

यस गोविंद दास तुहारा रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तम पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोतं गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले

सचा भगवंत सगल समगरी तुम रह सूतर तारी तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दया वै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे।

दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते परोपकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गल बात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उना नू ए समा नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नू नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह जी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तो वध जिन्नियां भी जवाना बच्चियां नू पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ़ है, सिखी दा तुरा है, मां नू ना भुलिए। कहंदे ने ना, जिस कौम नू कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नू देखदिया बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। यह हिंदुस्तान दी जनता नू हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी देने, कोई मेरिया अखा नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठा मीट

तीस हर सिद्ध साध सिद्ध हर साधिक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारे जय नाम समाध्यो हरख सो।

0: सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग।
1: नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कुल संभू समुद्रे पायो नाम निवास सक्यात जन।

0: सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो।
1: वाहिगुरु जी चरण ता पर सके हाथ, चरण गुर अमर पवल रे। हाथ ता पर सके हाथ, हाथ लगे गुर अमर पे। जी ता पर सके हाथ, जी गुर अमर पनीजे। नैन ता पर सके हाथ, नैन गुर अमर पखीजे। स्वर्ण ता पर सके हाथ, सरवण गुर अमर सुनीजे। सके हाथ सो हियो जित ही बसे, गुर अमर दास निज जगत पित। सक्यत सो सिर जाल पपने, जो सिर निवे गुर अमर नित। सक्यत सो हियो जित ही बसे, गुर अमर दास निज जगत पित। सक्यत सो सिर जाल पपने, जो सिर निवे।

0: चल पंथ मन धर्म से ती संबंध
1: नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए
0: मन पावे मुख द्वार मन परवारे साधार
1: मने तारे घर से मन नानक पवे न पेखर
0: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए
1: पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान
0: पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान
1: कह करे विचार करते कह करने ना इस्मान
0: तौल धर्म दया का पूत संतोख था रखिया जिन सूत
1: तबले ऊपर के तबार
0: धरती होर पर है होर तिस्ते भार तले कमन जोर
1: गंगा के नाम सबना लिखिया वही कलाम
0: लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया किता होए
1: रूप के ती दा जाने कौन कूतर
0: किता साओ इको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ
1: विचार बारे न जावा एक बार
0: जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख सूरम पाक सार असंख मोल विलाय दार
1: विचार बारे न जावा एक बार
0: जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
1: असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम कोर
0: असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे संख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार
1: एक बार जो पावे साई पलीकार दूसरा सलामत निरंकार
0: संख नाव असंख थाव अगम अगम असंख

0: कवन सवेला भक्त कवन कवन थित कवन वार वेल न पाईआ पंडती जे होवे लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुतमा हुना कोई
1: को साजे आपे जाने सोई
0: किव का राखा किव साला ही क्यों वरनी क्यों जाना
1: सबको आके एक दू एक सियाना
0: वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा कहो वै
1: आपो जाने अगे गे न सोए
0: पाताल पाताल लख आगासा आगास
1: और एक बात के वेद के अनेक बात
0: सहस ठार है कहन कते बात स्लो एक दात
1: लिखा हुए ता लिखिए है लेके हुए विनाश
0: नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप
1: साला साला एती सुरत न पाया
0: नदिया तै वाह पवे समुंद न जानिए है कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मन होना विसर है अंत न वेखन सुनन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत
1: जापे कीता जापे पारावार
0: अंत कारण केते बिल्ला हे ताके अंत न पाए जाहे
1: जाने को बोता की ये बोता हुए
0: वड्डा साहिब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ
1: ऊंचा हुए कोए तिस ऊंचे को जाने सोए
0: जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात
1: क्या न जाए
0: केते मंगे जोद अपार केते अगणत नहीं विचार
1: केते
0: दुख भुख सदमार एह पे दातरी दातार जे को खाए आखन पाए ओ जाने जेतिया मुह खाए जिसनो बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह अमुल आवे अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे।

0: सर्वत्र आलय के सर्वत्र
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
0: के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पुखा
1: सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
0: के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा
1: सर्वत्र मानिए सदैवं प्रदानिए
0: के सर्वत्र जापे के सर्वत्र थापे
1: सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
0: के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्रा
1: कलीमे के परमं फहीमे
0: के अकल लामे के साहेब कलामे
1: सर्व जो है तमाम रजू है
0: हमें सुल सलाम में सलीखत मुदाम।

गरीब निवास है, कलंकन प्रणास है, समस्तुल निवास है, समस्तुल जुबा है के साहेब किरा है, के सरबुल गवन है, हमें सुल रवन है।

मुदाम अनगन प्रणाम मुनमन सलाम अनपवनाश मुनमन प्रकाश अंशिज अंग आसन पंग जल थल अमंड दिस्व सपंड अनपवनाश तीर्तरतुरास ओंकाराद कथनी अनाद कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचंज गात अनरंज बात अडीठ तरम अत टीठ करम हर बोल मना चंत व प्रसाद करणाले है अरकाले है जगतेश्वर है परमेश्वर है त्रित के तरण है जग के करण है सर्वंग पर है सर्वंग कर है करुणाकर है विश्वंबर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है अजपा जप है थपा थप है अमृता अमृत है करुणाकृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अजबा कृत है अमृता अमृत है विश्वंबर है करणालय है पव पंजन है और गंजन है अकलन कृत है सर्वाकृत है परमात्म है सर्वात्म है भुजंग पर्यात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो

0: नापायो
1: वाहे
2: गुरु
0: जी की फतेह।
2: एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पाठ साई दसवीं कवियो बाज बेंती चौपाई हमरी करो हाथ ते रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा।
0: ताऊ चरणन मन रे हमारा ना जान करो प्रतिपारा।
2: हमें दुष वै तुमका वो आप हाथ दे मोए बचावो।
0: सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख समय करता रहा।
2: मोरे छानज कर दे करिए सब बेरन को।

0: तर सब हूँ
1: जेते बदन से सब तारे आप अपनी बूझ चारे
0: तुम सब ही तेरे निरालम जानत भेद भेद आलम
1: निरंकार निर्विकार निर्लंब आज नींद नाल अना

0: जाए बैठा का उसमित पे शंकर कैठा
1: सबरी सुस्त गाये जंबो आज गाल स्रूप से अम्बो
0: अब रचा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो।

0: Ram Klim Lati Janante Kunga Satkru Prasad Anand Pia Mirimai Satkru Me Paya
1: Satkru Dham Paya Zaititi Manodhya Vadaya
0: Ram Vasan Bhava Paliya Sabdo Gavinaya
1: Sabdo Tanka Vori Kira Manjini Vasaya
0: Nanak Anand Hoa Satkru Me Paya
1: Hey Man
2: Mere
0: Adu Sudar Ho Vrna Mere Adu Sabh Sanna
2: Angita Dukhare Pira Pare Sabh
0: Samna Gala Swami Swami Sokyo Mano Vesale
3: Kaha Nanak Man Mere Sada Raho Har Nale
0: Sacha Saiba Kya Nahi Kar Tere
1: Karta Tere Sab Kich Hai Jis De So Paave
0: Sala Sala Zai Naam Man Vesave
1: Naam Jin Ke Man Vesya Vaje Sabat Kanere
0: Kaya Nanak Sacha Saib Kya Nahi Kar Tere
1: Sacha Naam Mera Ya Daro
0: Sacha Naam Adar Mir Jin Puka Sab Gulvaya
1: Karshan Sukh Man Ay Vesya Jin Icha Sab Pujaya
0: Kaya Nanak Sacha Saib Kya Nahi Kar Tere
1: कहे नानक सुनो संतो सबत करो प्यारो सच्चा नाम मिराया दारो
0: पंच सबत कर सपागे गस सपागे सबत वाजे गला चित का तारिया
1: पंच दूत दुवास कीते काल कंटक मारिया
0: वाया जिस नाम हरे

0: तभी कह सब तू है जिन जगत पाया,
1: कहे नानक तू सदा कर्म है तेरा अंत ना पाया।
0: नर मंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया,
1: पाए अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया।
0: जंत सब तु पाए एक वेख पसन आया,
1: रब लोभ अहंकार झुका सदगुरु भला पाया।
0: नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया,
1: भक्ता की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना।
0: लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना,
1: खन्यो दिखी वालो निकी एत मार्ग जाना।
0: प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी,
1: कहे नानक चाल भक्ता जुगो जुग निराली।
0: ज्यों तू चला है तब चल है स्वामी हो।

0: करते खेल रचाया
1: जात इस पाना था जब नया परवार पला पाया
0: लिव चुरकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया
1: ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दुओ जलाया
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिन्हें लिव लागी तिने विचे माया पाया।

0: ज्योतिष मिल रहे हर वसे मनाए।
1: और आप मुल्क है भाग ना के नानका जिन हर पल पाए।
2: हर रास मेरी मन वण जारा हर रास मेरी मन वण जारा सतगुर ते रास जानी।
1: हर नित जपियो जियो लाख कटियो दिहाड़ी।
2: एहो तन तिन्ना मिलया जिन हर आपे पाणा।
1: कहे नानक हर रास मेरी मन होआ वण जारा।
2: ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए।
1: प्यास न जाए होत किते जिचर हर रस न पले पाए।
2: हर रस पाए पल्ला पिए हर रस बहुण न तृष्णा लग आए।
1: हर रस करमी पाइए सतगुर मिले जिस आए।
2: कह नानक होर अनरस सब विसरै जा हर।

कृपा में सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत उचेते ऊंचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मेत तुम ही जानी सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लीन त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौने दयावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय

सृपनीत ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बेसन महादेव शलिया, सृपनीत ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बेसन महादेव।

दुई क दोसा जगरा से निठो चाओ, दाता करता है आप तू देवे करे पसाओ, तू जानो ये सब से दिल ऐसा जिंद गवाओ, कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ।

कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैं नाहीं कछ हो नहीं, कछ आहे नमुरा, अवसर लज्जा राख ले हो,

साधक संग मिटाय अभिमान, साधक संग प्रगटय सुज्ञान, साधक संग बुझय परम नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वर्णय कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्लय, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होय सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतहूँ तावे, साध संग स्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत, साधु के संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग न बिगा पैर, साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजा सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनियाई, साध के संग न कबहूँ तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे, साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुँचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के कुर्बान, साध के संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है, साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे, साध संग धर्मराय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साधु के संग साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग इहा उहा सुहिला, साध संग विशरत हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नान कुदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग नमंति बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगे प्रमीठा, साधु के संग कट कट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यानै, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा उच ते उची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बनियाई, नानक साध प्रभेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै इक सबिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक, ज्यो बसुदा को खोदय को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी कह है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उच ते उच्चा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पय, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी नातम रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुरा नाम पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परिपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै होय सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग।

ले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पति होवत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टाप का जंत आप इसको कर्मबंत कहावे जन मरे वो जून प्रमावे धन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकियां मुक्ति आगे सुख पावे धनवंता होए कर गिरबावे तृण समान कट संग न जावे बोल इस कुरमान के ऊपर करे आस पल पीतरता का होए बिनास सब ते आप जाने बलवंत किन मैं होए जाए फसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म रहे तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले विरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतारे अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंज का मन होए कौ नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाई कोई जावे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग ने चुना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हों छूटे सहस कटेला कौटता वे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिखिया के करे नह तृप्ता वे खाप खाप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सपन मनोरथ वृथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसे प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण करावन करने हर इसके हाथ काम विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आपे आप प्रभ सोए जो किचकीनो स्वप्न रंग सबते दूर सबू के संग बुझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन सह आवे न जाए नानक सद ही रहे असमाए आप उपदेश समझे आप आपे रचया सबके साथ आपकीनो अपन विस्तार सब कुछ उसका हो करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए तंत नंतरे कैसोए अपने चलते आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन में आप मने अपने माहि नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदै किने बिरला चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत

जाय। यशपदी मानुक की टेक वृति सब जान देवन का एक है भगवान जिसके दिए रे अगाय वो न तृष्णा लागे आए। मारे रखे को आप मानुक कह कुछ नाही हाथ तिसका हुकुम भू सुखोए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लागे कोई। उस तत् मन मैं कल निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो उपेख ठाकुर का रंग सात संग बिन सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटै पाप जपिय हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गह नानक उजल मता बड़ पागी ते जन जग माए सदा सदार के गुण गाए। राम नाम जो करे बीचार से तनवंत गणे संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत की ओ सोजी जाने। नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपने आप सुजय तिसकी जाना हों तृष्णा बुझय। साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहते अन दिन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटी है जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे। जैसा सा तैसा दिशाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत् सब बूझिया। जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किच जन्मै न किच मरे। अपन चलते आप ही करे आवन जावन दृष्टि अंदृष्टि आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रस आप ताप अविनाशी नाही किच खंड धारण धार रहे हो ब्रह्मांड। अलख भेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभा बंत सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मैं लय कृपाल। गुर का शब्द जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करह बड़पागे। नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख का उत्तम कर मान जो किच करे सुप्रभ के रंग सदा सदा बसै हर संग। सहज सुभाय होवे सो होए करणे हर पछाणे सोए प्रभ का किया जन्मी ठिलगाना। जैसा सा तैसा दिष्टान जिस ते उपजे तिस माए समा

नाम के तारे सगले आकार, नाम के तारे पुरी असा पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतू सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समा इस माणी, सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे पुजाए तिसे सफली, सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास, सत नानक गुरते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत तेजन जा के हृदय प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोई, नाम जपता की गत होए। आप सत किया सब सत आपे जाने, अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सुखण हार, अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने की, या नानक जो दिस पावे सो वरती, या विस्मन विस्म पय विस्माद, जिन बूझया दिस आया स्वाद, प्रभु के रंग राच जन रहे, गुरु के वचन पदार्थ ले, ओए दाते दुखात्म हार, जा के संग तरह संसार, जन का सेवक सोवर।